0: Next FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Gajanan Ki Gatha, brought to you by Mara and Kaji, your home in the wild. Special offers for holiday season. गणपति बप्पा मोरिया। आज की कहानी है गणेश जी और चंद्रमा के बारे में। एक रात गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। कहा जाता है कि उस दिन उन्होंने बहुत सारे मोदक खाए हुए थे। रास्ते में मूषक अचानक एक सांप को देखकर डर गया और गणेश जी गिर पड़े। उनका पेट फट गया और मोदक बाहर निकल आए। ये दृश्य देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई, जिसके कारण गणेश जी नाराज हो गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम्हारा रूप तुम्हारे अहंकार का कारण बना है। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे काले हो जाएंगे और उनकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। ऐसा होते ही चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि चंद्रमा हमेशा के लिए गायब नहीं होगा, वे हर महीने धीरे धीरे घटेगा और फिर बढ़ेगा। इसी से पूर्णिमा और अमावस बनी। इस कथा में गणेश जी हमें एक बहुत आधुनिक संदेश देते हैं, किसी के रूप का मजाक मत उड़ाइए। आज सोशल मीडिया की दुनिया में अपीयरेंस को लेकर कितनी तुलना होती है कि कौन सुंदर है, किसका चेहरा अच्छा है, किसके कपड़े अच्छे हैं, लेकिन गणेश जी का रूप खुद हमें बताता है कि ईश्वर की सुंदरता हमेशा हमारी परिभाषा वाली सुंदरता नहीं होती। हाथी का सिर, बड़ा पेट, छोटा वाहन, टूटा दांत, और फिर भी गणेश जी हैं प्रथम पूज्य, यानी सुंदरता चेहरे में नहीं व्यक्तित्व में है। और चंद्रमा, वह हमें याद दिलाता है कि जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा गर्व है, वही कभी कभी हमारे अहंकार का कारण भी बन सकती है। गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। गजानन की गाथा वॉज ब्रॉट टू यू बाई मारा एनकाजी, योर होम इन द वाइल्ड। स्पेशल ऑफर्स फॉर द हॉलीडे सीजन।
0: ईस्ट FM, केन्या'स प्रीमियर एशियन मिक्स।